0: नमन सपिङ सेन्टरमा पाइत ओ महाराज है म फेरि नमन सपिङ सेन्टरमा जाइत
1: सबैजनाले नमन नमन भन्छ न के छ र त्यहाँ
0: के छैन र त्यहाँ खाद्य तथा किरानाका सामान कस्मेटिक सामान दैनिक उपभोग्य सामग्री होटलका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामान गिफ्ट खेलौना र बर्थडेका सामग्री सजावटका सामग्री संगीत र खेलकुदका सामग्री घर र भान्सामा प्रयोग हुने भाँडाकुँडा स्वदेशी तथा विदेशी चिसो पेय पदार्थ होलसेल तथा फुटकर मूल्यमा पाइन्छ अनि त्यहाँ नगर कहाँ जाउँ त सबैजना
1: प्रोप राइटर दुर्गा प्रसाद खरेल र निशान भण्डारी सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9857029017 र 9857037582
2: नमन सपिङ सेन्टर ठाकुर बाबा नगरपालिका 1 भरिगाउँ बजार बर्दिया विजय प्लाजा होटलको अगाडि
3: असौ साल त ढुक्क नारे बत्ती
4: हाँ त पोर्सालिक बात सम्झोट आम्मिन्डर लक्ती र हडबरा पानी वर्षा बेल अस्ति चिम कहाँ र सिक्जाए त सोचो त लट्ठी चिपकन घर डान डान पानी वर्ष टिकी मन छत पटाए लाग
3: हाँ त धन्न ब्यालन बिकुम से सुरक्षित ठाउँमा सरली नारी बत्ती
4: हाँ हो बदा
5: बर्खक ब्यालमा बहिक ढ्यार जोखिम रहत उहमार बहिया से बचकला पहिलहाँ सावधानी अपनाए लद्या खोलम पानी बरल बाकल से सावधान रही एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण तक सूची बनाई एक छोटे प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी वो बरखक ब्यालम संक्रमण के डर ढ्यार हुलक ओर से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी
6: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
7: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ बर्दियाको आवाज रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज गर्जन त सधैँ बाघ झैँ

0: केपी पोलिक्लिनिक भुरीगाउँमा मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने सम्बन्धी सूचना। केपी पोलिक्लिनिक भुरीगाउँमा यही भाद्र 20 गते शनिबारका दिन डीएम कार्डियोलोजिस्ट मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर अच्युत ज्ञावालीद्वारा मुटुरोग सम्बन्धी जाँच तथा उपचार हुँदैछ। समयमै सम्पर्क राखी जाँच तथा उपचार गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। स्थान केपी पोलिक्लिनिक भुरीगाउँ बर्दिया।
1: सूचना समाचार अनि मनोरञ्जनको साथी रेडियो टाइगर।

0: केपी पोलिक्लिनिक भुरीगाउँमा मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने सम्बन्धी सूचना। केपी पोलिक्लिनिक भुरीगाउँमा यही भाद्र 20 गते शनिबारका दिन जीएम कार्डियोलोजिस्ट मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर अच्युत ज्ञावलीद्वारा मुटुरोग सम्बन्धी जाँच तथा उपचार हुँदैछ। समयमै सम्पर्क राखी जाँच तथा उपचार गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। स्थान केपी पोलिक्लिनिक भुरीगाउँ बर्दिया।
1: ये है आपका रेडियो, रेडियो टाइगर बर्दिया की आवाज़, वॉइस ऑफ बर्दिया, वॉइस ऑफ बर्दिया।

0: यो हो रेडियो टाइगर 90.2 मेगाहर्ज। रेडियो टाइगर स्टूडियो टाइम। यति बेला साँझको 5 बजेको छ।
1: केपी पोलिक्लिनिक भुरीगाउँमा मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने सम्बन्धी सूचना। केपी पोलिक्लिनिक भुरीगाउँमा यही भाद्र 20 गते शनिबारका दिन डीएम कार्डियोलोजिस्ट मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अच्युत ज्ञावालीद्वारा मुटु रोग सम्बन्धी जाँच तथा उपचार हुँदैछ। समयमै सम्पर्क राखी जाँच तथा उपचार गर्न हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। स्थान केपी पोलिक्लिनिक भुरीगाउँ बर्दिया।